0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका गोरछ गरुन र दाना बहरु नागमा रावण नासिका सन्चल भई घुमाने दस इन्द्रियहरू तिम्रा भजनमा भोलोस् सरस्वती माईलाई कोटि छ नमस्कार घाँटी कण्ठ स्वर खुलोस्।

दाजु हरु को बालकांसो पानी हो नाव किना पोर्शा दो शिलोग माय काई आदी ना मोता साखे धेराई कुरा के आतो हो बाल माय यदि सुद्धा सौ पानी माने तिंदिन वाला हल दारा हो संसेबले गरियो बताए मोहिले देराई खुला के तू शिलग भन बने रायल तावारे सैन्यो ये फम्मा आजियो मैले प्रचार गरी दी मैले बताऊ धेर सना

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बद्रप्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 26 तारिक आषाढ 12 गते शुक्रबार द्वादशी तिथि अब स्तुति गरौ आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी

सीताजी कल भेटी फर्कौला रखे हमका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पसौला तिम्रो आहार भई। यति बात सुनि भन्न चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी। भोकी मैलिँदा उरिन त कपाल खोरे कि केश बुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई राम चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता तहाँ झन्नी मतलब लिई खडी भैनी पक्रेर गई महा। एक दिन हे हनुमान म चित्रकूटमा रामका नजिकमा थिया

Raho, Prahala, Raho, Zahalki, Tori, Mamu. यही वर्ष महापति मरि गए मेरो विपद के कहूँ सबकी मधी विवाह करी दिए बूढ़ा गुरु दीपना यही वर्ष महा